जिंदगी भरी कति साढ़ो कति बाढ़ो जिंदगी भरी जिंदगी नहीं थी सच्चा खाली बागर सा।